अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: कमर्शियल ब्रेक।
1: छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो, पेश आहे पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।
2: GFM 88 Network.

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुक सा आकर मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू. कॉल कर रहे हैं आप लोग 03000113428 के ऊपर. इसके ऊपर कॉल करने के बाद हमारा सेगमेंट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बोलो तो माने.

0: स्पष्ट है कि काशिफ ने कच्ची ककड़ी को घुसरकर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया, ठीक है, ये कहेंगे, ये कह के दिखाएंगे। जब आप ये कहेंगे कि जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा। और कॉलर चेक करते हैं जी, नेक्स्ट। हेलो,
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदार, आज तो पहली कॉल लग गई है। बहुत देर से ट्राई कर रही थी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम किस से ना बोलोगी?
1: जी सर, आप एक बार रिपीट करें।
0: एक बार रिपीट करूं? ओके। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया।
1: काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर
0: कर वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ और कुछ कहना है? अच्छा अच्छा
1: अच्छा अच्छा बस वापस आपको खुश रखे हमेशा।
0: मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता?
1: वैसे मेरी नजर में ना आप सबसे अच्छी है बस।
0: अच्छा मैं सबसे अच्छी हूँ, वाकई यही बोला है?
1: बिल्कुल वाकई में यही बोल रही
0: हूँ। अच्छा मैं समझी कि मुझे गलत सुनाई दिया। आए हाय, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। ये प्ले करना है क्या?
1: नहीं बस मैं आपको सुना रही थी, मतलब आपके घर के लोग से।
0: चलें जबरदस्त, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू सरदार। तो बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। ये थी सरदार, हमारा गाना चुप हो गया है। हमारा गाना चुप हो गया है और ये पता नहीं क्यों चुप हो गया है। हम इसको चुप होने नहीं देंगे, हम प्ले करेंगे आतिफ असलम की आवाज को। आज इत्तेफाक से आतिफ असलम के ये अच्छे अच्छे गाने मेरे सामने आ रहे हैं और देखें एक और अच्छा सा गाना। 3000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी, कौन और कहां से? हेलो
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल?
2: भाजी हाल चाल सही है, काल हमारे कट देता है भाजी, लेकर हमारे पास दुश्मन है तुम्हारी।
0: नहीं कट देता नहीं है, कट जाती है, ऐसी बात नहीं है।
2: पूछो तो अज ट्यू चक्कर आने मां आदम तो लदवा बेन
0: नहीं। अगर आपकी कॉल काटनी होती, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता सिस्टम तो हम कॉल उठाई ना स्पेसिफिक लोगी है ना।
2: अफसोस है हमारे को, हम पुराना।
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं,
2: कोई गल नहीं है,
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं आता। जिसकी कॉल लगती है लग जाती है, जिसकी नहीं लगती नहीं लगती। अच्छा मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
2: बस बाजी आसा ये बुधायो से तो के ने करे कॉल कई दे मां आज डहू चक्कर आ है कुदा सही कॉल लगे नथी, लगे थी ता बिल्कुल कटे थी चलो हाथ था।
0: ओके और कुछ कहना चाहेंगे?
2: चंदा दे ताके
0: इसके अलावा और कुछ कहेंगे? चलिए जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल ऐसे कॉलर्स का बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती कि जो सिचुएशन को ना समझते हो, जो ये समझते हो अगर उनकी कॉल कट जाती है, अगर नहीं लगती तो वो इसका जिम्मेदार आरजी को समझते हैं। तो अफसोस के साथ मैं भी कुछ नहीं कर सकती, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो इसका मेरे पास कोई हल भी नहीं है। अगर आप लोगों की कॉल नहीं लग रही है तो मैं जबरदस्ती आके तो नहीं लगवा सकती ना, तो यही चीज है। और जिसकी लग जाती है लग जाती है, और जिसकी नहीं लगती उसकी नेक्स्ट टाइम लग जाती है, जिसकी कट जाती है उसकी दोबारा भी लग जाती है, जैसे आपकी लग गई। तो अगर हम कॉल उठाना ही ना चाहें तो हम आप लोगों की कॉल ले ही क्यों, तो ये सोचने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच आपका। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब थोड़े से ना रूल्स जो है ना कॉल्स के लिए सख्त करूं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर जो कि कहते हैं कॉल नहीं लग रही, कॉल कॉल मिलती नहीं है, कॉल कट जाती है, तो भाई डेली कॉल नहीं करनी, ठीक है? डेली कॉल करेंगे, कॉल में खुद से ड्रॉप करूंगी बस, ठीक है? आप खुश, डेली कॉल नहीं करेंगे, 3 दिन छोड़ के फिर कॉल करेंगे, मैक्सिमम 3 दिन आपसे ये रूल होगा। और अगर मैंने देखा और मैंने सुना कि आपने अगले दिन कॉल की है, कॉल मेरी तरफ से ड्रॉप की जाएगी, ठीक है जी? तो ये कुछ रूल्स होंगे उन तमाम लिसनर्स के लिए जो कि कभी कभार कॉल करते हैं और उनकी कॉल नहीं लग पाती है, तो उनकी भी हम कॉल जो है ना लगवाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी जो मेरे सारे लिसनर हैं वो कभी कभार कॉल करते हैं तो उनकी कॉल लगे और कॉल लगने के बाद उनसे मेरी बात हो। तो टंग टेस्टर के लिए हमारा सेगमेंट जो कि इस वक्त चल रहा है, नेक्स्ट कॉल है। हेलो, ओके जी, मास्टर मंजूर का सॉन्ग। अच्छा, इस सेगमेंट में वही लोग कॉल करेंगे, टंग ट्विस्टर बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर एक और ट्राई करेंगे। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
3: मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद हनीफ कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: थरी मीरवास से।
0: तो कॉल कर रहे हैं?
3: हेलो,
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
3: नहीं नहीं, तो तीन दिन।
0: अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
3: बिल्कुल, फिर आवाज नहीं समझ में आ रहा
0: है। सॉरी,
3: आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रहा।
0: आवाज मेरी सही नहीं आ रही, अब ठीक आ रही है? हेलो, ओके जी, आपकी आवाज भी गायब हो गई है। तो ये कुछ सिग्नल्स इश्यू होते हैं जिसकी वजह से या तो आवाज़ चली जाती है या कॉल ड्रॉप हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ है।

0: It's 11:30 a.m. This soundtrack is brought to you by... It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by...
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स एलोवेरा आई एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव स्किन की अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ टिन दिहन में डार्क स्पॉट्स एक्नी ए स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ए दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ए निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे शहर खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप तारीख 18 अगस्त आई 25 अगस्त 2000 असद अजीज एमबीबीएस एमएस आर्थो आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी आई जोड़ गोदन जो सूर चेल जो सूर कंध जो सूर अरकुन निसा जो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजन टुटल बाह आई टंग आई अडियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेजो सोढा फ्लोर मिल 7 जी रोड खिपरो. नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 आई 0344-349 8896
4: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
5: सिंध का शहर खास
4: मीरपुर खास
6: छा अवां चायो था त अवां जो पैगाम बियन ताई पहुंचे छा आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास एफएम 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास एफएम 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 0333-3722-071

0: नकर ला नो ब्लैक पी कर ले उससे शादी बच्चे हो के अपने दो बेबी यार मेरे सब आएगे
1: हर दिन GFM 88 नेटवर्क

Okay, G, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं RJ रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, नहीं सॉरी सुर लगाओ गाना सुनाओ नहीं, बोलो तो माने, बोलो तो माने हमारा सेगमेंट है जी. और बोलो तो माने में आप लोग एक अदर टंग ट्विस्टर कहके दिखाएंगे और टंग ट्विस्टर जब आप बोलेंगे, जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को. ठीक है, तो कॉल्स हम आप लोगों के रिसीव करेंगे 03000113488 के ऊपर और बहुत सारी लाइव कॉल्स जो कि आप लोगों की मुझे रिसीव भी होती जा रही हैं. साथ साथ एक गाना प्ले कर लेंगे, हम गाना प्ले करके आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन करेंगे. तो जी गाना मेरे पास होगा मेरे ख्याल से फाखिर की आवाज़ में, हम फाखिर की आवाज़ को प्ले करते हैं.

0: अच्छा कमेंट्स भी तो पढ़ने हैं यार, कमेंट्स को पढ़ते हैं कमेंट्स. ओके किधर गए कमेंट्स?
1: दिल चीज क्या?
0: इस माँ की शो का कमेंट आया, मैं रहूं या ना रहूं मेरे गीत याद रखना, जो कभी तेरी महफिल में गुनगुनाओ वो सुर याद रखना, लोग बदगुमान करेंगे तुझे, लोग बदगुमान करेंगे तुझे, बस तुम मेरा प्यार मेरी शरारतें याद रखना. आहा सलाम सर स्मार्ट आया है, वेलकम करो. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो. सरदर्द हम एवं ही आपको याद करते हैं. एवं क्यों? स्मार्ट किशोर कहते हैं, अरे भाई दिन है बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है. गाने की बात हो रही है. अच्छा माँ किशोर कहते बाई टीसी बाई करने से पहले अपने कमेंट्स तो सुनते जाते
1: सफर हो और तुम सा.
0: फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट्स नहीं पढ़ती आप,
1: रात जुगनू से
0: देख ले पढ़ती हूँ मैं,

कितने मजे से गाना गा रही हूँ मैं आज. अच्छा हाँ, मैसेजेस की तरफ चलते हैं. हेलो आरजी सलाम, आदाब एंड ओके फाइन. काफी दिनों बाद आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है, सो वेरी एंजॉय किया है. नाइस एंजॉय, शुक्रिया आरजी, बाय एंड टेक केयर. जी पाल कराची से और कहते हैं सॉरी आरजी, लास्ट बात भूल गया था. तो बात ये है कि आप म्यूजिक मस्त प्ले करती हो, नाइस सॉन्ग कलेक्शन, सुपर ओके. अब ऑफिस

0: सखर की आवाज
1: छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पहंजे पसंदीदा रंग सा पहंजो
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
1: अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आहुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पहंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सा पहंजी शख्सियत में आयो नओ रंग नओ अंदाज ऐ नई ताजगी अडी पहंजे वेजे स्टोर ता आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पहंजी खूबसूरती के दियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद

Now would you welcome back? And आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, साथ साथ कमेंट्स और मैसेजेस को एंटरटेन करेंगे. टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है हमारे पास, और इसमें किशोर कहते हैं कि 10 मिनट सबर करके रीड करती ना, इतनी जल्दी क्या थी. वो आपका भाई का वो कमेंट देख लिया था ना, तो मैंने कहा कि अब रीड करना चाहिए. ठीक है, इसलिए रीड कर लिया था, वरना तो 20 मिनट रुक के रीड करना था मैंने. नहीं, मजाक कर रही हूँ वैसे, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ना दोनों चल रहे होते हैं साथ साथ, तो वो कमेंट्स थोड़े से आगे चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं. लेकिन 2 घंटे का ही तो शो होता है, कौन सा मैं आपको सारा दिन बिठा के रखती हूँ. अगर आप 2 घंटे का भी शो पूरा ना सुन सके तो फिर तो फिर क्या फायदा मेरे शो करने का. वेरी बैड. वो सरदर्द आपकी तारीफ कर रही थी तो उससे थोड़ी मजाक कर रहा था. थोड़ी मजाक, मुझे तो थोड़ा मजाक लग रहा था. थोड़ा मजाक.

0: 8000138 जिसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, लास्ट लकी कॉलर को हम चेक करेंगे जी कौन और कहाँ से। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मैं मोहम्मद इस्माइल हूँ।
0: कैसे भाई, ठीक ठाक? शो सुन रहे हैं या पहली दफा सुन रहे हैं या पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका शो में हर रोज सुनता हूँ। अभी मैं शिकारपुर से सुन रहा हूँ।
0: शिकारपुर से सुन रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त। वैसे शिकारपुर से नहीं सुनते आप?
1: नहीं, मैं फुलचर से हूँ, अभी आया हूँ दोस्त के पास यहाँ, तो इसलिए आपसे बात कर रहा था।
0: अच्छा,
1: शिकारपुर से बात कर रहा हूँ।
0: चले जबरदस्त। और मुझे ये बताइएगा कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात यह है कि सबका एक दूसरा ख्याल करना चाहिए, अदब और अखलाक से रहना चाहिए।
0: वेरी नाइस।
1: मैं एक शायर सुनाना चाहता हूँ, अगर
0: सुना दे, सुना दे।
1: मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, और जिससे होती है वो हमारे नसीब में नहीं होता है।
0: अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत बहुत कमाल।
1: और तुम्हें मेरे
0: जी सब कुछ ठीक ठाक? कुछ कुछ और कहेंगे अच्छा सा
1: जो सुनना चाहते हैं, जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शो सुनते रहे, आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं भी बहुत दिल से सुनता हूँ आपका शो, मुझे भी बहुत पसंद है। तकरीबन मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, मैं आपका शो सुनता आ रहा हूँ, मिस नहीं करता।
0: अरे वाह, क्या बात है, बस इसी तरह प्यार मोहब्बत से सुनते रहे।
1: आपका शो मैं मिस भी नहीं करता, और अगर आप नहीं आती हैं तो फिर आपके शो को आपको मिस करता हूँ।
0: अरे क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना।
1: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी। और ये थे कॉलर, लास्ट एंड लकी कॉलर। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा गाना भी खत्म हो गया है। एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करेंगे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट में हम इसी सॉन्ग के साथ जो है ना, अरे रैप अप करेंगे, ठीक है? अरे मैंने इसलिए किया कि मैंने एक गाना सर्च करके रखा था, वो मैंने खुद ही एकदम से ना क्लिक करके कट कर दिया। खैर कोई बात नहीं। और फाइनली जाने का वक्त करीब है, बहुत ज्यादा।

Gama, papa, gama, dada, nisa. Sa, nisa, dani, pa, dama, pa.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN

0: ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਈਰਾਨ ਜੇ ਆਮ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਦੋ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੂ ਕੰਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਖਿੱਤੇ ਜੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗਾਲਿਓ ਕਈ ਵੇਂਦਿਓ ਈਰਾਨੀ ਪਰਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਕੰਦੇ ਚਯੋ ਆਏ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਜੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੋ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੂ ਕੰਦੋ ਮਾਨੀ ਪਰਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੁਭਾਣੇ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਦੋ ਮਾਨੀ ਪਰਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਦੌਰੋ ਆਪਣੇ ਆਰਮ ਤੇ ਹਲੰਦੜ ਗਾਲਿਓ ਜੋ ਤਸਲਸਲ ਆਏ
1: अमेरिका जे ईरान खिलाफ बी डे जी शुरुआत थी वही अमेरिकी नायब सदर जी डेविनस चयो आहे त ईरान वटि आलमी बहरी रस्तनि जी मुकमिल तौर बंदिश जी सलाहियत मौजूदु नाहे मुआशी नाकाबंदी तहरान खे तबाह करे छॾींदी अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त असां आख़िरी मरहले में दाख़िल थी रहिया आहियूं दुश्मन खिलाफ़ सभ खां वॾी मुआशी कार्रवाई शुरू करे छॾी आहे सदर ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफ़न करे छॾियो आहे
0: अमेरिका जे मुआशी अमले जो ऐलान फौजी मुआद ते नाकामीअ जो इतराफ़ आहे ईरान जे पासदार इनकलाब जे तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मजबी चयो आहे त अमरीका खे जंगी मैदान में कामयाबी मिले आहे त मुआशी मैदान में शोर न करे आ ईरानी फ़ौज दुश्मन खे पोइते हटण ते मजबूर कयो आहे जंग में तहरान कामयाबी थियो आहे
1: कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच खे वारसन रद्द करे छॾियो अदालती कमीशन जोड़ण वारे हुकूमती फ़ैसिले ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल केस जी जांच लाइ जी आई टी जोड़ण जो मुतालबो वकील जबरान नासिर चयो आहे त जांच कमेटी जी सिफ़ारिश ते अदालती कमीशन ठाहियो वेंदो आहे हुकूमती फ़ैसिले बाबति वारसन खे आगाह नाहे कयो मीडिया ज़रिए ख़बर पई आहे त असांजे 24 सवालनि मां कंहिं बि जवाब जो जवाबु नाहे मिलियो मीर रज़ा जा आख़िरी फोटेजिस बि नथा ॾिना वञनि
0: आज़ाद कश्मीर जे कानून साज़ असेंबली जे मखसूस सीटनि लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल औरतुनि जे 5 मखसूस सीटनि समेत 7 सीटनि लाइ 38 मेंबर्स वोट कास्ट कया नून लीग वटि 26 ऐं पीपल्स पार्टी वटि 12 मेंबर्स मौजूदु नतीजनि जे ऐलान बैदि आज़ाद कश्मीर असेंबली जो इजलास थींदो चूंडियल नुमाइंदा हलफ़ खणंदा
1: फरीदाबाद समेत सेवण तालुके में 2212

0: शाह जी अदालत फुर मज़ामत रेंजर्स इंस्पेक्टर के कत्ल के समय बिन जवाबदारन के मौत की सजा बुधाए छी। दहशतगर्दी टोड़ अदालत रेंजर्स इंस्पेक्टर शार्क के कत्ल केस की बुधनी कई। अदालत जवाबदार करीम बख्श गोपांग सरवर राहू के ब भेरा मौत ए पंजवी लख डंड की सजा बुधाई। जवाबदारन खिलाफ 2024 में काजी अहमद रोड से कत्ल थियल रेंजर्स इंस्पेक्टर शार्क के कत्ल केस दाखिल।
1: मोहन जो दड़ो वेझो मोटरसाइकिल तां दादू केनाल में किरी बुधी वयल औरत जो लाश बे ॾींहं बि न मिलियो। घोठ ब्राबी सारो वासी औरत साजदा बुगे जी लाश जी ॻोल्हा लाइ मकामी टोगन समेत लाटकाणे खां रेस्क्यू टीम बि पहुतल। औरत जो लाश हथु करण लाइ ॻोल्हा जारी आहे।

0: मुसाफिर फोत 15 का वधिक जख्मी हैदराबाद का मातली विंदड़ वेन टंडो मोहम्मद खान रोड ते मीरानी मोरी स्टॉप वट कल्टी थी पई हादसे जे अस्पताल मंतकिल
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: मोरू नौशहरों मीरपुर खास लाड़काना सक्खर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था जिते होजे तहफुस जदीद सहूलतों आई मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोय भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
4: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150
3: आई कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज आई 600 गज
4: हिते तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतों
3: साफ मिठो पानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
3: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाइ बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: and 0
5: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
6: सिंध का शहर खास
5: मीरपुर खास
6: इस शहर अब आवाज की सूरत बनी है
5: मीरपुर खास की एक नई पहचान
6: जीए मीरपुर खास FM 88
5: मीरपुर खास की आवाज
6: जीए FM 88
5: सिंध की आवाज
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे शहर खे फ्री मेडिकल कैंप तारीख 18 अगस्त जैमे डॉक्टर असद अजीज MBBS MS आर्थो आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी ऐ जोड़ गोडन जो सूर चेल जो सूर कंध जो सूर अर्कुन निसा जो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजन टुटल बाह ऐ टंग ऐ हड्डियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेझो सोढ़ा फ्लोर मिल 7G रोड खिप्रो नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 आई 0344-349-8896
8: आपके अपने शहर मीरपुर खास में हैदराबाद के मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब शेख शुगर मैदा कॉलेज ब्लड प्रेशर जिगर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं एड्रेस अल शफा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन मीरपुर खास मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744405
9: अखियन जे सब खां वडे इदारे जा मशहूर ऐं तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी ऐं सर्जन डॉक्टर इसराज ऐं अखियन जी बिन बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहिनि टाइम रोजाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं शाम 6 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं ऑपरेशन कया वेंदा एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेज़र अखियुनि जी अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास मोबाइल नंबर 03032617077
8: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जीए मीरपुर खास एफ FM 88 की आवाज़ मिलाद जलसा स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स NGOs फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स CNG स्टेशन शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स सीड कारपोरेशन सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 03322724301 और 0333 7220 71

GFM 88 नेट हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बिदंदल तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। के समंदर चाहतों की बारिश और खजानों के साथ दुआएं पल से पल तक आसे कल सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तौर से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारी सारी यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती के नाम वासी।

तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और तो चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें करेंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन भी लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम, और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है इस प्यारे से प्रोग्राम में आप तमाम लोगों के साथ साथ मौजूद है जनाब, और कितने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है मुझे बताएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताएंगे। सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद अन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे और इन 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें। रेडी हो जाइए, रेडी शेडी होकर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सब अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी पिटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 वोल्ट की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ, बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब होते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती।

ओके तो क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे यही चलते क्या नमस्ते आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दें।

उम्मीद है कि आप आधे प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते के नाम मस्ती आपकी सदराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दें इंस्टाग्राम जो है वो कितने ग्राम का होता है और इसके अलावा अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स से यानी कि चोरी चोरी चुके चुके हमें सुनते हैं तो क्या करेंगे अपनी खामोशियों को तोड़ लीजिए हमारे प्रोग्राम का ऐसा हो लीजिए और अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए एल आर के सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 1 4। और जनाब अगर मुझे फेसबुक पर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है और पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो वहां पर आपको आराम से हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जैसे ही आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे हालात थे हुए मानो जगह पोस्ट के लाइक 9 करना जल्दी करो बाबा। पोस्ट को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए बताइए आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा है और मुझे ये भी बताइए कि इंस्टाग्राम जो है वो कितने ग्राम का है क्या आप जानते हैं नहीं जानते तो जानिए ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दुनिया में जो जानी चाहिए और साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं यहाँ पर फरवा गुल सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद है यदि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा मुस्कान गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे आप ही आप कैसी हो आई होप यू आर फाइन वेरी वेल ये सब बताएं कैसी है नजीर खोसा भाई हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से कहते हैं परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है ये आजजी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है क्या बात है जी बहुत बेहतरीन और फहीम शेख हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम के दिमोल इस्लाम अदर चाल आए अदा खुशायो सफा भला भाव गानो बुधायो भला न सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा हाजिर हाजिर अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो हाले सुल्तान आ चुकी है हाले सुल्तान हेलो वेलकम स्वीटी और चाचा खालिद कहती हाय सिद्रा कैसी हो फाइन आई एम अच्छा बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं और फरवा कहती है सिस्टर प्लीज पोइट्री रीड कीजिएगा हम कहाँ वाकिफ थे लोगों की फितरतों से हमें लगता था जैसा जो दिखता है वो वैसा ही होता है असां की भी लगंदो हुयो पर हाणे खबर पया ना बाबा जमानो मटिजी वियो आहे टेंशन न वठो टेंशन न वठो और कहती है सिस्टर प्लीज सॉन्ग नथो विसरी मुखा नथो विसरी मां कोशिश क्या थी तांजला एक गानो लाइंदा से और किशोर भाई कहती है स्मार्ट अजय जल्दी आया हुआ है स्मार्ट जल्दी आया हुआ है जाए बुधा वांदो भली गाल है भली गाल अच्छा ये हमारे साथ है मायरा कहती है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है डियर वाओ आज तो शो

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती। प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों को सुनाए जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे गाने। कुछ आप लोगों की चॉइस के ऊपर होते हैं, कुछ हमारी पसंद भी होते हैं और कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अच्छा वाला म्यूजिक कलेक्शन बनाया होता है। अच्छा अगर अज जे सवाल जी गाल कही वने जो सवाल अजन माणन अना ताईं कोन पुछो आहे या ॿुधो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधाईंदा हल अॼु जेको टॉपिक मूं अव्हां खां पुछो आहे उहो कुझु ईअं आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त इंस्टाग्राम जेको आहे ठीकु आहे इंस्टाग्राम जेको आहे उहो केतिरे ग्राम जो आहे छो त हुन हू पाण ई ॿुधायो त मां ग्राम आहियां तव्हां मूंखे ॿुधायो त हू केतिरे ग्राम जो आहे। हिन सवाल जो तव्हांखे जेको आहे जवाब ॾियणो आहे ठीकु आहे। और अगरि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। ये दोनों चीजें आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूंगी तो आप लोग कर दिया करें। उन खां अलावा जेके जेके माण्हू असांखे ॿुधनि पिया सभिनी खे चवंदा भली करे आया तव्हांजी मोहबतूं समातूं ऐं चाहतूं आहिनि बाबा।

ओके जी सो हिते तव्हां जा मैसेजेस बिल्कुलु पढ़ंदासीं पर तव्हां जे लाइ जेके गाना लिस्ट में रखिया आहिनि सो उन्हनि गाननि जी तरफ़ बि अचूं था ऐं गाना मूं वटि आहिनि तमामु घणा भला भला गाना सो हीअ वारो ट्रैक सभ खां पहिरियां ॿुधूं था ऐं गानो आहे

सनम सोनो हुजे साखी पो वठण वारा किथे मुड़ना है पीण वारा किथे मुड़ना डाटो पहलो गानो हो जेको एंजॉय के सी ना अलावा बियो भी गानो है साइन लिस्ट में बिल्कुल साइन एंजॉय के ना सी तमा से गड बिल्कुल सी फरमाइश कंदा आहियो त थोरो इन चीज जो बि ख्याल रखंदा कयो त असांजे प्रोग्राम जो जेको टेम्पो आहे उहो ख़राब न थिए।

और परवेज की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, ये पता नहीं क्यों आजकल मेरे जहन पे चढ़ गया है। आपको पता है कि जो गाना मेरे जहन पे चल जाता है बस वो फिर आप लोगों को सुनाती रहती हूँ, आपका दिमाग भी खराब करना होता है ना। बात को समझा करें।

कितना प्यारा गाना है कसम है। अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रजाक भाई आपको वेलकम कहा जाता है। दातुल्ला कहते हैं अर्ज किया है, अर्ज करते हैं लिखते हैं मेरे बेरबत ख्यालों में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ मेरी बात में क्या रखा है, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे वरना गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा है, मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। वाह वाह वाह वाह, भली हुई सफा। फहीम कहते हैं अदर टॉपिक मुखी खबर कोने यार मथु ना आना जाओ। मां तो फुल तैयारी में आया हूं।

अच्छा सुनील कुमार हमारे सारे सदरा टॉपिक है नहीं पता ये क्या बात हुई भला। और रहीम जी हमारे साथ फरवा के दिन टॉपिक इंस्टाग्राम का वेट और आपका वेट इक्वल है सच्ची बुधायो कसम भाई। अच्छा जी खास के लिए लिखते हैं कि असां के चवण की जरूरत ना है सदरा दुश्मनन के जलाने लाए पंजो खिलनी काफी आहे वालेकुम अस्सलाम सही था जो अल्लाह सही था जो अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अच्छा जल्दी आया तो मान्या वांदा आयो सही आ बाबा नेक्स्ट टाइम 45 ते आऊंगा न ये न कर जा ता पूरे 1 बजे इंदा कर वो अन्या लेट हो जे टाइम ता आयो।

साले सुल्तान कहते हेलो मुर्शिद, इंस्टाग्राम का कोई वजन नहीं होता, ये एक डिजिटल ऐप है, मुझे पता है। अच्छा बुखे अला न था खबर, सही आता बुधायो बुधायो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो जंगलों से आई हुई हूँ।

0: दीजिए, खास के लिए लिखते हैं इंस्टाग्राम को ही। सही है जी, सही है, गाल समझे मची हुई। रशीद को सुबह हमें सुन रहे हैदराबाद से। रशीद भाई वेलकम कहते हैं आपको, कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और चाचा खालिद आप आ चुके हैं प्रोग्राम में दोबारा से, आपको वेलकम कहा जाता है। टॉपिक के ऊपर आपने बात करी है, ओके जी। और ये जो सवाल है ना, छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से कितनी छोटी है, तो ये हमने पूछ लिया था प्रोग्राम में, अब बड़ी का पूछेंगे। ना बाबा गानो वडो ना है, गाने के वडो कयो वयो है।
1: गाने भी तो छंड मामू जी पचराणी सही आवन वन छा याद कंगा।

अच्छा हमारे साथ ये गोट मोहम्मद तैयब थीबू का हबीबुल हथीबू भाई के लिए सॉन्ग बुध रहा जो ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल यो गाना तांजले हलाइंदा सी थैंक यू तांसा सगेट मौजूद आए टॉपिक इते फॉलो कयो वही कौन है जो पांजी पानी सीट ते वेरो मां तरे ते तांगे चवंदी आ न तई ॾिसो धिका खाइंदो।

अख लाख भाव ने वजन थोड़ो घटे जो वे सो ये जो बोला तोर में थोड़ो लगे तो तांगा मिस्टेक थी गयो है

0: परवा, बिल्कुल आपका टॉपिक के ऊपर वाला जो मैसेज है वो हमने रीड कर लिया था और हिदायतुल्लाह कहते हाँ जो आके सर पर चढ़ जाए वो सॉन्ग हमें सुनाकर ही दम लेती हो, हाँ ना बाकी था डांस एंकर तो गाना बुझे ना जो मजो ही है। अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से, आपको कहते वेलकम, आप कहते प्रोग्राम की जितनी तारीफ करें गुड, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कमर जमान बलोच तवाजी पसंद जो गानों बिल्कुल हलाइंदासी तवासने प्रोग्राम में मौजूद आए सो थैंक यू। मायरा के दे सिद्रा आपने कल भी मुझे गाना नहीं सुनाया था।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खिते में जटादार अमन के क्याम लाए सफारती कोशिशों जारी रखने लाए पुरजम आए। ईरानी परडेही तर्जमान है तो फील्ड मार्शल सैयद आसमुनि के दौरो बिन्हीं मुल्क के बेहतर लागापन जो सबूत है, दौरे दौरान बेतरफा लागापन से गालू थी दियो।
3: अमेरिका के ईरान खिलाफ बी डे की शुरुआत थी वही, अमेरिकी सदर नायक है तो ईरान बटालवी बहरी रस्तन की मुकम्मल तौर बंदिश की सलाहित मौजूद ना, मुआशी नाकाबंदी तेहरान के तबाह कर छी। अमेरिकी नाणे वाले वजीर है तो असा आखिरी मरहले में दाखिल थी रहा हूं, दुश्मन खिलाफ सब का वही मुआशी कार्रवाई शुरू कर छी है। सदर ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफन कर छो है।
2: अमेरिका के मुआशी अमले जो ऐलान फौजी माज से नाकामी जो इतराफ है। ईरान पासदार इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल असीब मौजवी है तो अमेरिका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले आ तो मुआशी मैदान में छोर न कर। ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने से मजबूर किया है, जंग में तेहरान कामयाब थो है।
3: वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, सिंध के मामलों ए जारी तरक्याती मनसूबों से तफसीली गाल बोल, बिन्हीं अगवाड़न गडियल दिलचस्पी वारन मामलों मौजूदा सियासी सूरतहाल से भी ख्याल की देवत कई, रवादारी ए सियासी मुशावरत वारो सिलसिलो जारी रखने से भी इतफाक, राणा सनाउल्लाह मोहम्मद औरंगजेब नजीब तारड़ अहमद चीमा अली परवेज मलिक शिजा फातिमा ए बया भी मुलाकात में मौजूद रहा।
2: आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली के मखसूस सीटों पोलिंग जो अमल मुकम्मल, नून लीग अठ मखसूस सीटों में शहन से कामयाब, पीपल्स पार्टी ब सीटू हासिल कर सकी, औरतों के पंज मखसूस सीटों में टन से नून लीग ए बिन से पीपल्स पार्टी कामयाबी माणी, आलम ए टेक्निक के सीट से भी नून लीग हासिल करण में कामयाब थी। नून लीग के सहरिश कमर मरियम जमान ए मरम एड्रेस कामयाबी माणे वरती, पीपल्स पार्टी के फरजाना याकूब जोया खुर्शीद ए बेन भी कामयाबी माणियो, आलमन के सीटन से नून लीग जो पीर मजहर सईद शाह ए टेक्नोक्रेट के सीट से बेरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कामयाबी माणी।
3: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच के वारसन रद्द कर छो, अदालती कमीशन जोड़ने वाली हुकूमती फैसले खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल, केस की जांच लाए GIP जोड़ने जो फैसलो, वकील जिब्रान नासिर है तो जांच कमेटी की सिफारिश से अदालती कमीशन ठाई वी है, हुकूमती फैसले बाबत वारसन के आगाह ना कर, मीडिया जरिए खबर पई है तो असाजे 24 सवाल में कें भेट जो जवाब ना मिलो, मीर रजा ज आखिरी फोटेजेस भी ना दिना वन।
2: भान सैदाबाद समेत सेवण तालके में 212 स्कूलों जो इमारतों खतरनाक करार, सील करण जो हुकुम, सेवण भान सैदाबाद झांगारा बिरे बोबकवाड़ टल्टी बम्बाशाक ए बेन इलाक स्कूल जबून हाल बनल, तालके सेवण अंदर 28 एलिमेंट्री तोड़ी हाई स्कूल भी खतरनाक करार, 184 प्राइमरी स्कूलों की इमारतों खतरनाक होने सबब स्कूल भी हंध मुंतकिल करने जो फैसलो, सुजाण धुरन पारा स्कूल के इमारतों की फौरी तौर से मरम्मत कराने जो मुतालबो।
3: मुख्तलिफ शाखन में पानी को खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज इंतजार धरणों।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर मान जो सवाल होंगे असा सही पोलियो की वैक्सीन दह साल चौथी डी वे तो असट बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान जैसे कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर रेशो दह साल घट आ तेज असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।

प्रोग्राम के दूसरी घंटे में आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी अभी सुना है, स्टार्ट किया या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को कहते हैं वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि ये जो इंस्टाग्राम होता है ये कितने ग्राम का होता है, बताएं तो जरा, पता तो चले। बिल्कुल जी, मासूम से सिदरा का मासूमाना सवाल। आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। फेसबुक वाले लोग जो होते हैं ना, वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। उनका अलावा जितना भी प्यारा प्यारा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, बाबा ही प्रोग्राम तव्हां सभिनी माण्हुनि जो आहे। ऐं प्रोग्राम में अगरि तव्हां मौजूदु आहे त ॿुधाईंदा कयो त हा बची असां गॾु आहियूं, तव्हां सां ॿुधूं पिया तव्हांखे। और उनखां अलावा अच्छा, ये चीज एक आजकल नोटिस करिए, लोग ऐसा करते ना जिंदगी में, वो ये सोचते हैं कि बस जिंदगी में आगे निकलना ही सब कुछ होता है। जैसे जिंदगी कोई दौड़ है, जिंदगी कोई रेस चल रही है, और रेस को जीतना ही लोगों के लिए ऐसा है कि बस सब कुछ हो चुका है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जनाब, हर वक्त दूसरों से आगे निकलने की फिक्र में रहने वाले लोग जिंदगी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी जो है वो कितनी खूबसूरत है और कितने खूबसूरत तरीके से जिंदगी को गुजारा जा सकता है। लेकिन वो अपनी भाग दौड़ में, अपने रोजमर्रा के कामों में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें इस चीज का भी पता नहीं चलता कि हम इस जिंदगी को जो है ना वो दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। अगर आप जब रियलाइज करते हैं, मैंने बहुत सारी खवातीन को भी ऐसे देखा है जो भाई बिलावजा बहुत सारे काम करती हैं, जो काम नहीं होते करने के लिए वो काम भी कर रही होती हैं बार बार। तो अगर आप अपने घर में बिल्कुल जी काम करना चाहिए, अच्छी बात होती, लेकिन उतना काम किया करें जितना जरूरी होता है। हर वक्त खुद को थकाते रहना और वो तमाम काम करना जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके काम है ही नहीं, उन कामों में अगर अपना वक्त और अपनी एनर्जी जाया करते रहेंगे तो आप अपने आप को कब टाइम देंगे? खुद को टाइम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये चीज आप मेरी जो है ना लिख कर रख ले, जब तक आप अपने आप की कदर नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, खुद की वैल्यू नहीं पहचानेंगे, तब तक लोग आपको बेकार समझेंगे। तो अपनी कदर कीजिए, खुद को वैल्यू दीजिए और खुद को इज्जत दीजिए, तब जाकर लोग आपको वो तमाम मकान दे सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमने ये सीखा है कि जिंदगी ने हमें बिल्कुल इतना तो सिखा ही दिया है कि ताल्लुक इतना ही रखो जितना सामने वाला संभाल सके। हद से बढ़कर दी गई इज्जत अक्सर बेइज्जती की सूरत में आपको वापस मिलती है। तो कोशिश किया करें कि उतनी ही लोगों को इज्जत दे, उतना ही लोगों को टाइम दे, उतना ही लोगों को रिस्पॉन्स दिया करें जितनी वो बर्दाश्त कर सके। उनके अंदर वो बर्दाश्त होनी चाहिए, वरना अक्सर ऐसा होता है कम जरफों को अगर आप हद से ज्यादा, चाहे वो इज्जत हो, प्यार हो, टाइम हो, दे देते हैं तो फिर वो आपको बेइज्जती की सूरत में ही चीजें वापस मिलती है। तो कोशिश करें खुद को वक्त दें, अपनी जरा कदर पहचानें और खुश रहने की कोशिश करें। ओवरऑल प्रोग्राम आप लोगों का अपना है और यहाँ पर हमारे साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं। बिल्कुल जी, शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक गाना है तो हम जरा पहले ऐसा करते हैं, गाना सुन लेते हैं। ये मायरा की चॉइस के ऊपर गाना होने वाला है। मुझे थोड़ी देर के बाद ही समझ आएगा, अच्छा मायरा इस गाने की फरमाइश कर रही है। क्योंकि गाने का जो टाइटल होता है वो कुछ और होता है, आप फरमाइश कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो चलें ठीक है, गाना एंजॉय करते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। और जी आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया कर देना, इसका इंतजार कर रहे हैं।

मुझे गाना सुनेंगे, लेकिन साथ साथ जो आपके मैसेजेस आते जाने तो उनकी जाने भी जरा आ जाते हैं। यहाँ पर हिदायतुल्लाह कहते हैं, कहाँ से लाती हो ऐसे सॉन्ग बल्ले बल्ले, मजे आ जाते ना ऐसे गाने सुनकर। बस मैं थोड़ी सी मेहनत कर देती हूँ, फोल्डर्स को जाके जांचती हूँ तो मिल ही जाते। अच्छा ये गानों बिल्कुल बुधो मो ना जाने क्यों डाडो वी आई पी गानो हो मुझे बुधन चलाए हो ना करीमा सडी ब्रेक में बस ये गानो बुधो तुम मजो आयो। अच्छा हिदायत ला कहते हैं जितना मोबाइल का वेट होगा उतना ही इंस्टाग्राम का वेट होगा। अच्छा यो क्यों मना पो भला ब्याज के पेन वो बेचारा काटे वजह। अच्छा फहीम कहते हैं इंस्टाग्राम में जितने लेटर्स आते हैं उतने ग्राम का है इंस्टाग्राम। आप असा भी दुको लगायो आ। अच्छा अच्छा सही दुको लगायो आ। अच्छा सजो डी अगर मां खिलांदी ना तेने जो रीजन यो हुंदो आ त एकड़ो डी खिलंदी आ बेरी वरी मुंह सुजल हुंदो आ हाने कल ता नेटो हुंदो कल जी मूड वरी डसो मां खुश आया अलै चाहे बाबा गाल समझ में नहीं दी आए एकड़े डी अजी मूड दो बेरी अजी मूड हुंदो आ अलै चाहे तो बोलिया साई जिंदगी में। अच्छा जमान बलोच बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगाते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसन कहते अब समझ आ गया जो लोग आपके बुलाने से नहीं आते शो में तो उनको मलकू बुलाने आता है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और मोहम्मद जमान भाई कहते हाय बुआ जी असान जो भी कोई सुठो गानो विद योर वॉइस में पोएट्री बुधायण ते मूड थियो आए। अच्छा बुधण ते मूड थियो आए सही सही केड़ो गानो हुजे बुधायो त पुतान जी पसंद जो गानो भी बुधी वठंदासीं। और ये जी हमारे साथ इरम कहती है आप ही रात को 2 बजे अचानक हमारे यहाँ तेज हवा और बारिश आ गई थी, मुझे लगा था ये AI है। बारिश का AI से क्या ताल्लुक है ये बात मुझे समझ नहीं आई। कहते आपके यहाँ भी अचानक हवा और बारिश हुई थी, बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन हाँ तूफान आया था। अब इसका AI से क्या ताल्लुक है बताओ मुझे। अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थेबू से अभी बुला थेबू भाई के लिए आपका शो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश कही आप बिल्कुल बिल्कुल ताजो गानो हलायूं था। और ये हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम एंड सलाम भाऊ हम भी आपके प्रोग्राम में सॉन्ग सुन सकते हैं अगर ये तो मुमताज मौलाई फायजा का सॉन्ग सुनाए तू कराची का शहजादा मिला हो की रानी। हाजिर हाजिर बिल्कुल यो गानो तव्हांखे ॿुधरायूं था हम दोनों पाकिस्तानी हम दोनों

जयपाल भाई बोले बोले क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा विलेट मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो कहते रऊफ मक्सी का गाना सुनाए हाजिर एदारो सब गाना जी फरमाश करना ना गेंजा गेंजा गाना अलाई नो। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते अस्सलाम वालेकुम बादी सिद्रा मुस्कान शो नाइस है सॉन्ग सुनाए मुमताज मोलाई का जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है सॉन्ग कुछ बोले यो गानो बिल्कुल बुधवा पर थोड़ो मुखे अजीब तो लगे खबर अजीब गाना मां पानी प्रोग्राम में नया लाएंगे।

असां पापा जिंदगी इंजॉय कंदा आहियूं, बिल्कुलु जिंदगी इंजॉय कयो। जेको मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदो हूंदो उहो सभु वाकई मूंखे लॻंदो आहे पंहिंजी ज़िंदगी इंजॉय करण वारा माण्हू आहिनि। और ये बिलाल अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरमा गानो ॿुधराईंदा, छो थो नाराज़ थिए तूं? अच्छा ठीकु आहे, मां ॾिसां थी कहिड़े सिंगर जो गानो आहे। बिल्कुलु हलाए वठूं था, मिली वियो। अरे साजिद अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम जी, कहते हैं हाँ हाँ आपको वेलकम कहते हैं। परवा के दी आज मैडम का मूड बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी बस आज ही होगा, कल वरी सागोड़ो मूड कल हो लगे तो तुम मुझे नजर नहीं सड़ींदा आयो।

अच्छा वही बाजी पर भाई कहते हैं कल भाऊ आप सेठ थी अच्छा क्या हुआ था नहीं हुआ गाल करो डी मुझे मूड सही तो रहे बेडी वेरी उदास आया हलाए छु हाँ अजो ऐसो मतलब अजो सही मूड आ वरी सुभाणे ई हों दो जी अजो आ मतलब जे कल होयो एरम की दी यार जवाब ना में इंस्टाग्राम यूज करती हूँ और मुझे ग्राम का पता भी नहीं है सही है सही है गोट हाची गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बानी खास के लिए अमा जो आवाज मिठो सोनो आहे ओके थैंक यू।

0: हक़ीक़त ई आहे बिल्कुल कुझु माण्हुनि जे प्रोग्राम में हुजण सां बि मुंहिंजे मूड ते फ़र्क़ु पवंदो आहे अला हक़ीक़त अथव और साजिद हुसैन सुमरो वालेकुम असलाम भा तव्हां असांखे ॿुधो पिया डी आई जी ऑफिस लाड़काना खां शाहिब बाबर जो गानो बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदा थैंक यू तव्हां सां गॾु आहियो हिदायतुल्ला बिल्कुल आप सही कह रहे भाई मुमताज मुलाई की ना कुछ गाने अच्छे मत
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
0: मास्टर मंजूर जी अगर गाल कई वे मास्टर मंजूर जो अगर फोल्डर खोलियो वे उन्हें कें

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।
1: सुबह की

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सखरन मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन महिला पर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती के नाम हस्ती बिल्कुल जी आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ ना फेसबुक पर मौजूद है वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें उन्हें अलावा मोह जमा का सवाल पूछो आए तो मुख्य बुधायो इंस्टाग्राम जो आए वो केतरे ग्रामीण जो आए सवाल पूछो

जाए बदा कसम गई। बहुत ही अच्छा सा गाना जो कि हम एंजॉय करें और साथ ही साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और हाँ बिल्कुल अच्छा, तो ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं लाड़कना की कूंज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हाय, आपके प्रोग्राम की क्या बात है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। सुम आमीन। कूंज फायजा का नया गाना सुना, फायजा हले पे बुदोस फायजा के, और कहते हैं थैंक्स सो नाइस ऑफ यू कूंज, थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। और ये प्यारे भाऊ कहते हैं मेरी बात भूल गई कि टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बात तो मुझे याद है मेरे प्यारे भाऊ। और गोट मोहम्मद थी वो कहा भी बोला थी, वो कहते हैं सॉन्ग बुधरायो चंडर जो टुकड़ो लगे तो अजय तो तू जाने तो मोला यो तो मुखा भी सही।

चले जी बिल्कुल टाइम बची वियो त सभिनी सां गाना हलाए वठंदासीं पर हाणे गानो हेॾो वॾो हूंदो आहे टाइम असांजे प्रोग्राम जो सफ़ा ओ हेतिरो आहे कहिड़ा कहिड़ा गाना मां हलायां सो चलो जंहिंजो रहिजी वञे थो पंज बजे वारे प्रोग्राम में हलाए वठंदासीं उन खां अलावा ही हिकिड़ो गानो आहे जेको शाहिद बबर जी आवाज़ में आहे शाहिद बबर जी गाने जी फरमाइश बि कंहिं करे छॾी हुई सो ही गानो उनखे डेडिकेट कयूं था

नहीं बाबा, सॉफ्टवेयर की बात मत करो बाबा, मत करो। वो गाला ना हो तो गया है, पर अगला मनता नहीं है, मनता नहीं है। बड़ी गाला है। और चाचा कहते रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नो, और हमेशा सच का साथ दें बेटा। बिल्कुल जी, सच का साथ देंगे बुधायो के। सच गाला उन्हें जो साथ दियनो आसान।

0: जीवा बहुत ही प्यारा सा गाना आप सुन रहे हो नखा इलावा फहीम सैया मगाल के समझी बस और मोहम्मद जमान भाई के टॉपिक जितना जुबान पे लफ्ज इंस्टाग्राम का वेट भारी है उतना इंस्टाग्राम का वेट भी है। अच्छा दिमाग का रमजान भाई हमें सुन रहे हैं कहते हैं बहन शो में आप सबको भाई बहनों को सलाम वालेकुम अस्सलाम और जवान मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमें सुन रहे हैं तो शंबानी भाई को भी वेलकम कहते हैं। केसर भी हमारा शो सुन रहे हैं केसर आपको भी वेलकम कहते हैं। फरवा लिखनी सिस्टर आरजे सिद्रा मुस्कान आपकी कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन बड़ी जबरदस्त है सुपर डुपर ब्यूटीफुल थैंक यू और हैप्पी आ चुकी है अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट एंड क्यूट आरजे क्या हाल है आपकी तबीयत कैसी है खैर से आ गई इस प्यारे शो में वेलकम टू शो जाना। ओके आप स्कूल से वापस आ गई होंगी तो आपको वेलकम कहते हैं। नन्ना लाड़का ना की रानी नया मा पानी घर जी रानी आया
1: अब महेश्वर जड़ो माहू को मिलई शल
0: वैसे यू भी ना यू तो ठहे मैं उनके दिल की रानी हूँ बस
1: दन जी राहते को मैं हर
0: जी का गाल मजो भी ने

जी ॾाढो भलो गानो जेको असां एंजॉय कयोसीं ॿियो गानो असांजे लिस्ट में आहे बिल्कुलु ही बि असां ॿुधंदासीं बिलाल हिन गाने जी फरमाइश करे छॾी हुई मूंखे लभे कोन पियो पर सम्झो त अच्छा ही वारो गानो हूंदो सही सही

0: ॾाढो खाइनि माण्हुनि जी ज़िंदगीअ
1: में
0: अलाह तौबा तौबा। अच्छा जयपाल भाई, कहते भाऊ रात को हमारे सिटी में हवा आई थी, अनुष्का ने बताया था यहाँ का मौसम नाइस है। हाँ रात तूफान आयो, तूफान।
1: अच्छा चवी दुनिया छे दास, तू तदर थो चवी दुनिया छे दास।
0: अच्छा हेरा की थी राहत का कोई भी सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट आरिफा रिमशा।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: नायब वज़ीर-ए-आज़म साक्षात बरतानिया आज सरकारी दौरे ते लंदन पहुंची वयो। नायब वज़ीर-ए-आज़म साक्षात 24-28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे तर्जुमान मौजूद बरतानवी परडे वज़ीर एड मिली बैंड समेत बिन आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि में सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियुनि जो मामिलो उथारियो वेंदो।

ईरान खिलाफ़ अमेरिका जे मुआशी जंग में मदद कंदड़ मुल्कनि जे मुफ़ादनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका पंहिंजे सफ़ारतकारी ऐं ॻाल्हियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणे चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मक़ामी मुआहिदे बाबति सुवाल ते मोहसिन रज़ाई चयो त मुआहिदे सां ज़ाहिरु थिए थो त अमरीका इन्हनि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू किथो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेनेज़ुएला बणाइण जो सोचियो। पर ईरानी अवाम जे इतिहास सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ सां लाहौर में मुलाक़ात। मुल्क जे सियासी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ात में पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीक़।

जे सरबराह मौलाना फजल रहमान चयो आहे त दिफ़ाई ताक़त मुल्क ऐं रियासत जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान जे मज़बूत दिफ़ाई कुवत जा क़ाइल आहियूं। पिशावर में वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे मौलाना फजल रहमान चयो त आइन में आहे त क़ुरान ऐं सुनत जी रोशनी में ई आइन ठाहियो वेंदो। हुकुमराननि जो आइन ते अमल न करणु उन्हनि जी कोताही आहे।

0: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर तो पीटीआई बानी पांजी भेण नौरिन न्याज से मुलाकात में सुहेल आफरीदी या क्यादत बाबत का भी गाल ना कई। नौरिन न्याज की मुलाकात में खुश हुई कुछ गाल जाहिर न थी कर सकजन। मुलाकात बाबत बेबुनियाद खबरू अची रही है। नौरिन न्याज पीटीआई बानी के मुलाकात दौरान के
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल लाल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
3: GFM 90.8

बहरी रस्तनि जी मुकमल तौर बंद जी सलाहियत मौजूद न आहे। मुआशी नाकाबंदी तेहरान खे तबाह करे छॾींदी, अमरीकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त असां आख़िरी मरहले में दाख़िल थी रहिया आहियूं। दुश्मन ख़िलाफ़ सभ खां वॾी मुआशी कार्रवाई शुरू करे छॾी आहे। सदर ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफ़न करे छॾियो आहे। अमेरिका जे मुआशी हमले जो ऐलान फौजी मुआज ते नाकामी जो इतराफ़ आहे। ईरान पासदार इनकलाब जे तर्जमान ब्रिगेड जनरल हुसैन मोबीअ चयो आहे त ईरान खे जंग मैदान में कामयाबी मिले आहे त मुआशी मैदान में शोर न करे आ। ईरानी फ़ौज दुश्मन खे पोइते अटण ते मजबूर कयो आहे। जंग में तेहरान कामयाब थियो आहे। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात। सिंध जे मामलनि ऐं जारी तरक़ियाती मनसूबनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻुवाणनि दिलचस्पी वारनि मामलनि ऐं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। रवादारी ऐं सियासी मशावरत वारो सिलसिलो जारी रखण ते बि इतफ़ाक़। राणा सना लाइ मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारण, अहमद चीमा, अली परवेज़ मलक, शीज़ा फातिमा ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूदु। आज़ाद कश्मीर जे कानून साज़ असेंबलीअ जे मखसूस सीटनि लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल। नून लीग 8 सीटनि मां 6 सीटनि ते कामयाब। पीपुल्स पार्टी 2 सीटूं हासिल करे सघी। औरतुनि जे 5 मखसूस सीटनि मां 3 ते नून लीग ऐं 2 ते पीपुल्स पार्टी कामयाबी माणी। आलमन ऐं टेक्नोक्रेट जे सीट बि नून लीग हासिल करण में कामयाब थी वई। मखसूस सीटनि ते इलेक्शन बाद चूंडियल शायतलनि मेंबरनि हलफ खणी वरितो। आज़ाद कश्मीर असेंबलीअ जे स्पीकर नून लीग चूंडियल मेंबरनि खे हलफ खणायो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾी। जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो। सिंध हुकूमत गुज़िरियल ॾींहुं चीफ जस्टिस खे वापारी मीर रज़ा जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण लाइ ख़त लिखियो। मीर रज़ा क़तल केस में अदालती कमीशन जोड़ण ऐं GIT क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी। जस्टिस अदनान करीम मेमण जे धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। 31 अगस्त ते जवाब तलब। दरख़्वास्त मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर ओसामा, डॉक्टर सीमा केस जी जांच कंदड़ टीम जे मेंबर्स समेत 19 ॼणनि खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जिबरान नासिर चयो आहे त पुलिस जी जांच अञा ताईं कंहिं हतमी नतीजे ते न आहे पहुती। अदालती कमीशन सां केस जी जांच ते नाकारी असर पवंदा। कमीशन जी इनकारीअ खे अदालत में चालान तौरु पेश नथो करे सघिजे। गॾियल जांच टीम क़ाइमु करण जी ज़रूरत आहे।

पीपल्स पार्टी खुलियल तौर ते रद्द कयो आहे। सिंध जो विरांगो क़बूल न आहे। सिंध जा माण्हू सिंध खे पंहिंजे वतन समझनि था। सिंध सदियुनि खां आबाद आहे ऐं आबाद रहंदी। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त उस्तादनि जी फीस फ्रेम ऐप खे 6 ज़िलनि में लागू कयो वियो आहे। कुझु माण्हुनि खां फीस फ्रेम ऐप हज़म नथी थिए। जदीद टेक्नोलॉजी मदद वठंदासीं। फीस फ्रेम सिर्फ़ु उस्तादनि लाइ न आहे पर समूरे अमले लाइ आहे।

कार्रवाई जो बाइकाट रैली कढी धरणो बिहायो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूदु आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। फहमीदा पिताफ़ी अॻवा खे सॼी सिंध हाईकोर्ट सखर में ॿुधणी। DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण, SSP सखर अनवर खेतरान ऐं धुरनि जा वकील पेश। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ते ॿधल सिंगल बेंच पुलिस जी कारकर्दगी खे सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे DIG सखर खे छंड। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना त अव्हां जी कारकर्दगी खे ॾिसी लॻे थो त हिननि डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई न आहे। जेकॾहिं अव्हां अदालती हुकमनि ते अमल नथा कराए सघो त हुते तव्हां इस्तीफ़ा ॾियो। ॿी सूरत में अदालत DIG सखर खे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी। जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाबु नथा कराए सघो त IG सिंध खे अदालत में तलब कंदासीं। अदालत खे सॼी ॿुधणी 7 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी कंदे औरत खे अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾिनो।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबाद घरनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, वगण जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबाद घर सरापा एहतजाज, इंडस हाईवे ते धरणो। पाणी खोट ख़िलाफ़ आबाद घरनि एहतजाज कयो आहे। मीरपुर साकरो में लुधियावा जाम ब्रांच ऐं गुंगी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबाद घरनि जो एहतजाज। आबादगार एक्शन कमेटीअ जे सॾ ते पाणी खोट ख़िलाफ़ लेफ्ट स्टाफ वटि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शाखनि में पाणी छोर करण जो मुतालबो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेटियल अप जे सॾ ते उस्तादनि जा मुज़ाहिरा। मटियारी सेवण पीर जे ॻोठ में प्राइमरी उस्तादनि एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरणा आया। अॻवाणनि चयो आहे त सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादनि जो जाइज़ हक़ आहे, देरि ऐं कोताही क़बूल न कयो वेंदो। सर्विस स्ट्रक्चर जे नोटिफिकेशन ताईं जिदोजहद जारी रखंदासीं। सखर में 14 महीननि खां ड्यूटी कंदड़ PST ऐं JST उस्तादनि जो पघारुनि न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। उस्तादनि डायरेक्टर ऑफिस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। मुज़ाहिरनि चयो त खेरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि जे मुख़्तलिफ़ तालकनि में 14 महीननि खां ड्यूटी करे रहिया आहियूं। 14 महीना गुज़रण बावजूद पघारूं जारी न आहिनि थियूं। परेशानियुनि जो शिकार आहियूं। डायरेक्टर ऑफिस ऐं DO ऑफिस जा चकर काटे थकिजी पिया आहियूं, पर पघारूं न आहिनि मिलियूं।

0: औरतुनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुलाज़िमन मूजिब मासूम ॿारनि खे फीस न हुअण सबबि स्कूलनि मां बेदख़ल कयो पियो वञे। घरनि में फाकाकशी वारी सूरत हाल मौजूदु आहे। ऐं हैदराबाद में टंडो जाम वेझो गाॾीअ जे टकर में ज़ख़्मी थियल साहली रज़ा बिरोई जे वारसनि जो SSP आफ़िस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरनि जो चवणु आहे त 18 अगस्त जे राति जो चेकिंग दौरान जवाबदारनि गाॾी रोकण जो इशारे ते अली रज़ा ते कार चाढ़े छॾी। SHO चइनि जवाबदारनि खे आज़ादु करे रुॻो हिकु अहसन आराई ते केस दाख़िल करे गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई। SHO जो इहो अमल पुलिस जे ज़ख़्मी अमलदार अहलकार सां ज़्यादती आहे। जांच करे SHO खे हटायो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: सुबह

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात सिंध के मामलों ए जारी तरक्याती मनसूबन से तफसीली गाल बोल बिन्हीं अखबारों गडियल दिलचस्पी वाले मामलों ए मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी ख्यालन की डेवट रही रवादारी ए सियासी मशावरत वालों सिलसिलो भी जारी रखने से इतफाक राणा सनाउल्लाह मोहम्मद औरंगजेब आजम नजीर तारड़ अहमद चीमा अली परवेज मलिक शिंजा फातिमा ए बया भी मुलाकात में मौजूद हुआ। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के मखसूस सीटों लाए पोलिंग जो अमल मुकम्मल नून लीग अठ मखसूस सीटों में छियानते कामयाब पीपुल्स पार्टी ब सीटू हासिल कर सकी औरतों की पंज मखसूस सीटों में भी टिन नून लीग ए बिन पीपुल्स पार्टी कामयाबी हासिल कई आलिम ए टेक्नोक्रेट की सीट भी नून लीग हासिल करण में कामयाब मखसूस सीटों से इलेक्शन बाद चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ खड़ी वरतो आजाद कश्मीर असेंबली के स्पीकर 9 चूंडियल मेंबर्स के हलफ खणायो। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रजा केस की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़े छोड़ो जस्टिस उमर सियाल कमीशन की सरबराही कंदो जांच लाए महीने जो वक्त मुकरर कराची के मेयर मुर्तजा वहाब चाहिए अदालती कमीशन से मीर रजा के वारसन के साकार करण पवो न तो ये सिलसिलो हलो रो जांच दौरान थियल कोताहन के सामूँ अचान घुर्ज पुलिस ए जांच इदारा कमीशन की मदद कंदा हुकूमत की तरजीह मीर रजा के माइटन के मुतमिन करण है। मीर रजा कत्ल केस में अदालती कमीशन जोड़ खिलाफ ए जी आई टी की क्याम लाए वारसन की दरख्वास्त सिंध हाईकोर्ट में बुधड़ी जस्टिस अदनान करीम मेमन दरन के नोटिस जारी कर छाया 31 अगस्त जवाब तलब दरख्वास्त में मीर रजा जो पोस्टमार्टम कदड़ डॉक्टर उसामा ए डॉक्टर समैया केस की जांच कदड़ टीम के मेंबर समेत 19 जणन के दुर बनाया वो दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर चो तो पुलिस की जांच अजा तई कें हतमी नतीजे से ना पौती अदालती कमीशन से केस की जांच से नाकारी असर पौधा कमीशन की इंक्वायरी के अदालत में चालान तौर पेश न कर सकते गडल जांच टीम कायम कर जरूरी है। सिंध में नवन सूबन के पीपुल्स पार्टी खुलियल तौर से रद्द कर सिंध जो विरांगो कबूल ना है सिंध जहा मू सिंध के पैंो वतन समझन था सिंध सदियों का आबाद है आबाद रही सिंध के तालीम वाले वजीर सरदार शाह चो है तो उस्तादन की फीस

के 6 जिलन में लागू कयो आहे। कुझु माण्हुनि खां फेस फ्रेम ऐप हज़म नथी थिए। जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद वठंदासीं। फेस ऐप सिर्फ़ उस्तादनि लाइ न आहे पर समूरे अमले लाइ आहे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लताड़ खिलाफ़ एहतजाज कंदड़ उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जे कैंप ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज लतीफ़ पली जो जी आमद। शागिर्दनि सां यकजहतीअ जो इज़हार। अयाज लतीफ़ पली जो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु बादशाही इदारो बणिजी वियो आहे, जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो। रुगो मरसूं सिंध न ॾिसूं जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलंदा। अमली क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि। अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुरिजे। मिठी में थरपारकर बार एसोसिएशन पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बॉयकॉट रैली कढी धरणो बिहायो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूदु आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। पामीदा पिताफ़ी अगवा केस जी सिंध हाई कोर्ट सखर में ॿुधणी। DIG सखर, SSP सखर ऐं धुरन जा वकील पेश। अदालत पारां फामीदा लिगारी जी अदम बाज़ियाबी ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। DIG सखर खे बि छॾु। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना, तव्हांजी कारकर्दगी ॾिसी लॻे थो त हिन डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई नाहे। जेकॾहिं अवां अदालती हुकुम ते अमल नथा कराए सघो त उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियो। ॿी सूरत में अदालत तव्हांखे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी। जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाब नथा कराए सघो त IG सिंध खे तलब कंदासीं। केस जी ॿुधणी 7 सेप्टेंबर ते मुलतवी।

सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में आबादगार जो पानीकोट खिलाफ़ एहतजाज वगण के मुख्तलिफ़ शाखन में पानीकोट खिलाफ़ आबादगार सराफा एहतजाज पढ़ियल इंडस हाईवे से धरणो पावड़ शाख मंगियो शाख मीरवा लुंडी शाख ए बेन शाखन में पानीकोट खिलाफ़ आबादगार एहतजाज किया मीरपुर साकरो में लदियावा जाम ब्रांच ए गुंगी शाख में पानीकोट खिलाफ़ आबादगार मुजाहरों आबादगार एक्शन कमेटी के सद से पानीकोट खिलाफ़ लेट स्टॉप से एहतजाजी मुजाहरो किया शाखन में पानी छोड़कर मुतालबो सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पेटे अलिफ की सद से उस्तादन जा मुजाहरा मटियारी सेवण पीर जो गोठ कुंडरी टडो मोहम्मद खान में प्राइमरी उस्तादन मुजाहरा कर धरना आया अगवाणन जो चवण हो तो सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादन जो जायज हक है देर ए कोताही के कबूल न किया वो सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन तदोजहद जारी रही।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों बार बार पैं बार पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असाज बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल लायल है। मां बार शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जहा बेहतर थे थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जैसे बार के करा जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्द में जो महफूज रहे।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जी अब्दुल सत्तार भयो चवे। शामराद मिदरी खा फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खा फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लतार खिलाफ़ एहतियाज कंदड़ उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जी कैंप ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो जी आमद, शागिर्दनि सां यकजहती जो इज़हार। अयाज लतीफ़ पलीजो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु बादशाही इदारो बणिजी वियो आहे, जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो। रुगो मरसू सिंध न ॾिसूं जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलनि था, अमली क़दम खणण ज़रूरी आहिनि। अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुरिजे। मिठीअ में थरपारकर बार एसोसिएशन पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट, रैली कढी धरणो हयो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूदु आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो।

वामिंदा पिताफी अगवा केस की सिंध हाईकोर्ट सखर में बुधनी डीआईजी सखर एसएसपी सखर ए धुरन जहा वकील पेश अदालत पारा फामिंदा लिगारी जदम बाजियाबी से सख्त कावड़ इजहार डीआईजी सखर के छंड जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स दिना तवानी कारकर्दगी दिसी लगे तो इन डिवीजन के पुलिस की जरूरत ही ना है जैसे अवं अदालती हुकुमन से अमल ना कराए सो तो उदे इस्तीफा दियो बी सूरत में अदालत तक हटाने ला हुकुम जारी कर सके थी जैसे गुम थियल औरत के बाजाब ना कराए सो तो आईजी सिंध के अदालत में तलब कंदी केस की बुधनी 7 सेप्टूबर से मुलतवी।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जो पाणीकोट ख़िलाफ़ एहतजाज, वॻनि जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में पाणीकोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, इंडस हाईवे ते धरणो, खावड़ शाख, मंगियो शाख, मीरवा, लुंडी शाख ऐं ॿियनि शाखनि में पाणीकोट ख़िलाफ़ मुतारो कयो वियो। मीरपुर साकरो में बि लधियावा, जाम ब्रांच ऐं गूंगी शाख में पाणीकोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज, आबादगार एक्शन कमेटीअ जे सद ते पाणीकोट ख़िलाफ़ लेट स्टॉप ते एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, शाखनि में पाणी छोड़कण जो मुतालबो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेटे अलिफ जे सॾ ते उस्तादनि जा मुज़ाहिरा, मटियारी, सेवण, पीर जो ॻोठु, कुंडी, टंडो, मोहम्मद ख़ान में उस्तादनि पारां मुज़ाहिरा कया विया। अॻवाणनि चयो त सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादनि जो जाइज़ हक़ आहे, देरि ऐं कोताहीअ खे क़बूल न कयो वेंदो। सखर भरिसां नौजवान नारीअ सां मुबैना ज़्याती जी कोशिश केस दाख़िल, गिरफ़्तारी न थी सघी। बाईजी थाणे जे हद ॻोठु बहादुर रखण में सोरहनि वरनि जी नारीअ सां ॿिनि नौजवाननि पारां मुबैना तौरु जिन्सी ज़्यादतीअ जी कोशिशि कई वई। मुतासिर नारी जे वालिद नेक मोहम्मद सुमरो जी फरियाद ते ॿिनि जवाबदारनि तनवीर सुमरो ऐं तारिक सुमरो ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। फरियादी मूजिबि हुन जी धीअ पंहिंजे घरां मासीअ जे घर वञी रही हुई त जवाबदारनि पाड़े वारे घर में खेसि गेले वठी विया। नियाणियुनि जी दाहुनि ते पहुतासीं त जवाबदार फरार थी विया। दादू में आरा मशीन मालिकनि ऐं काठ जे वापारनि जो पुलिस ऐं रेवेन्यू ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो, आरा मशीनूं बंदि करण जो ऐलान। अॻवाणनि चयो त पुलिस ऐं रेवेन्यू वारनि ज़ुल्म जी इंतिहा करे छॾी आहे। एहतजाजनि दादू जो ई मेहड़ के अनशा ॿियनि नंढनि वॾनि शहरनि में 400 आरा मशीनूं कारखाना बंदि कया वेंदा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी से मुलाकात। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद हो। ISPR मूजिब मुलाकात दौरान पाकिस्तान और ईरान विच में बेतरफन लागापन इलाकई सलामती और विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डे वठ। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमुन और इस्तेहकाम ला सफारती हल कढ़ से भी जोर भर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरों विच ओभर में तकरार की पुरमुन हल वाल कोशिशों हिस्सों है।

0: मुकमल तौर से तबाह थी वो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेंट है तो तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत की वही है। ईरान के व्यापार में सहूलत डींदड़ मुल्क इदारों के भी सजा डी वी। पाकिस्तान ने इनकलाब है तो अमरीका के मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो इतराफ़ है। ईरानी आर्मी चीफ चो तो वी साल तीन जंग विड़ी पी तो विड़ंदी मुल्क की दिफा तो पोते न हटंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पांजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो तो असाजे बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थे थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जो बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्द में जो महफूज रहे।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकुम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GAFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

वजीर आजम पाकिस्तान ओलियो वैल्यू चेन पॉलिसी जो इफ्तिताह करे छो तकरीब से खिताब कदे शहबाज शरीफ चयो तो मुल्क में ज़रई इनकलाब लाए हारन की भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़ से जैतून जो फसल पोखो पे वे जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नानो बचाए सके तो हुकूमत हारन की मदद वो सिलसिलो जारी रखंदी।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तहरान में ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी साह मुलाकात, घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। आईएसपीआर मौज मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच बेतरफन लागापन इलाकई सलामती विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डेवट कई हुई। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमून इस्तेहकाम ला सफारती हल कढ़ण से जोर भर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो विच ओभर में तकरार की पुरमुन हल वाल कोशिशों को हिस्सों है। ईरान मुकम्मल तौर से तबाह थी वो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेसन है तो तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही। ईरान के व्यापार में सहूलत दींदड़ मुल्क इदारन के भी सजा दिनी वी। पास्तारान इनकलाब है तो अमरीका की मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो इतराफ़ है। ईरानी आर्मी चीफ तो वी साल तंग विड़नी पी तो विड़ी मुल्क की दिफा तो न हटंदी।

सिस्टम नाकाम ना है थो डिलीवर कर रो है सिस्टम बाबत बेहतर फैसलो अवामी कर सके तो कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार आया सादिक हालतू पेरी घड़ी खराब हुई हाँ बेहतर की चुक्य मुआशी सूरत हाल में बेहतरी वजीर आजम फील्ड मार्च की कोशिशों नतीजो है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आयन उन्हन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए। सुबह

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकात। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। ISPR मौजूद मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच में बेतरफन लागापन इलाकाई सलामती विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमुन इस्तेहकाम लाए सफारती हल कढ़ से भी जोर भर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरों विच ओभर में तकरार की पुरअमुन हल वार कोशिशों को हिस्सों है। ईरान मुकम्मल तौर से तबाह थी वो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेडसेट चाहे तो तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही। ईरान के व्यापार में सहूलत दींदड़ मुल्क इदारन के भी सजा दिनी वी। पासदारान इनकलाब है तो अमरीका की मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो एतराफ़ है। ईरानी आर्मी चीफ चयो त 20 साल तई जंग विड़नी पई तो विड़ंदी मुल्क की दिफा तोते न हटंदी। विच ओभर में बहरान के पार फलस्तीन जो मसलो है। फलस्तीन इसराइल विच में गालन की बहाली आज़ाद फलस्तीनी रियासत जो क्याम जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग के उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात दौरान गालबोल दौरान इजहार। चीनी परदेही वजीर वांग यी है तो विच ओभर की सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल थी हुई है। अमन अमान की बहाली लाए गालन तरफ वापसी अंटर है। चीनी परदेही वजीर ए कोयती परदेही वजीर की मुलाकात दौरान सहकार वधाने ते बेतफाक। वजीर आजम पाकिस्तान ओवलियो वैल्यू चेन पॉलिसी जारी करे छी। तकरीब के खिताब कदे शहबाज शरीफ चो तो मुल्क में जरई इनकलाब ला हार की भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़न से जैतून जो फसल पोखो पो वे। जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नाणो बचाए सकजे तो। हुकूमत हार की मदद वो सिलसिलो जारी रखंदी।

वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात, सिंध जे मामलनि ऐं जारी तरक़ियाती मनसूबनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल, सियासी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठ, रवादारी ऐं सियासी मुशावरत वारो सिलसिलो जारी रखण ते बि इतफ़ाक़। राणा सनाउल्ला, मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारण ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूद हुआ। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन जमायतनि जो गॾियल इजलास, महमूद ख़ान अचकज़ई, मौलाना फज़लुर रहमान, बैरिस्टर गोहर समेत समूरनि मुख़ालिफ़ धुर जमायतनि जा पार्लियामानी अॻवान ऐं मेंबर शरीक। जमहूरियत जी बहालीअ लाइ पार्लियामेंट जे अंदरि ऐं ॿाहिरि गॾियल तौरु जदोजहद करण ते बि ग़ौर वीचार, अहम फ़ैसिलनि जो इम्कान। सिस्टम नाकाम नाहे थियो, डिलीवर करे रहियो आहे। सिस्टम बाबति बहितर फ़ैसिलो अवामी करे सघे थो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक चयो आहे त हालतूं पहिरीं घणियूं ख़राबु हुयूं, हाणे बहितर थी चुकियूं आहिनि। मुआशी सूरत हाल में बहितरी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जे कोशिशुनि जो नतीजो आहे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान जी क्रेडिट रेटिंग में बहितरी करे छॾी। ख़ुदि मुख़्तियार क्रेडिट रेटिंग CAA1 मां वधाए B3 कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रेडिट रेटिंग में बहितरीअ जी आजियां कंदे चयो आहे त हुकूमती मुआशी टीम जे कोशिशुनि जो नतीजो आहे। आज़ाद कश्मीर जे कानून साज असेंबलीअ जे नवनि चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ़ खणी वरितो। आज़ाद कश्मीर असेंबली जे स्पीकर नवनि चूंडियल मेंबर्स खां हलफ़ खणायो। आज़ाद कश्मीर असेंबली जे 8 मखसूस सीटनि मां बि नून लीग 6 सीटनि ते कामयाबी माणण बाद ऐवान में नून लीग जी सीटनि जो अंगु वधी 31 थी वियो। पीपुल्स पार्टी 14 सीटूं माणे सघी। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾियो। जस्टिस उमर सयाल कमीशन जी सरबराही कंदो। जांच लाइ महीने जो वक़्तु मुक़रर। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त अदालती कमीशन ते मीर रज़ा जे वारसनि खे सहकार करणो पवंदो, न त हीअ सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहिनि खे साम्हूं अचणु घुरिजे। पुलिस ऐं जांच इदारा कमीशन जी मदद कंदा। हुकूमत जी तरजीह मीर रज़ा जे माइटनि खे मुतमिन करणु आहे। मीर रज़ा क़त्ल केस में अदालती कमीशन जोड़नि ख़िलाफ़ ऐं GIT जी क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी। जस्टिस अदनान करीम मेमण धुरन खे नोटिस जारी करे छॾिया। 31 अगस्त ते जवाब तलब। दरख़्वास्त में मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा ऐं डॉक्टर समिया केस जी जांच कंदड़ टीम जे मेंबर समेत 19 ॼणनि खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जिबरान नासिर चयो त पुलिस जी जांच अञा ताईं कंहिं हतमी नतीजे ते नाहे पहुती। अदालती कमीशन सां केस जी जांच ते नाकारी असर पवंदा। कमीशन जी इंक्वायरीअ खे अदालत में चालान तौरु पेश नथो करे सघिजे। गॾियल जांच टीम क़ाइमु करणु ज़रूरी आहे। सिंध हाई कोर्ट बार जी मेज़बानी हेठि आल पाकिस्तान वकील एक्शन कमेटीअ जो अहम इजलास। सिंध जो विरांगो रद्द। इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो बि ऐलान। आल पाकिस्तान वकील एक्शन कमेटी जे चेयरमैन अली अहमद कुर्द चयो आहे त सूर्य बादशाह जी धरतीअ ते वार थियो त वकील मज़ाहमत कंदा। सिंध सिर्फ़ ज़मीन जो टुकड़ो न पर माउ आहे। सिंधू दरिया सिंध जी वहदत जी निशानी आहे ऐं सिंध जी वहदत खे नुक़सान पहुचाइणु न ॾिनो वेंदो। इजलास में मुल्क जे चइनि हाई कोर्ट्स जा वकील ऐं अॻवान शरीक थिया। सिंध में नवनि सूबनि खे पीपुल्स पार्टी खुलियल तौर ते रद्द कयो आहे। सिंध जो विरांगो क़बूल न आहे। सिंध जा माण्हू सिंध खे पंहिंजो वतन सम्झनि था। सिंध सदियुनि खां आबाद आहे ऐं आबाद रहंदी। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह चयो आहे त उस्तादनि जे फेस फ्रेम ऐप खे 6 ज़िलनि में लागू कयो वियो आहे। कुझु माण्हुनि खां फेस फ्रेम ऐप हज़म न पई थिए। जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद वठंदासीं। फेस ऐप सिर्फ़ उस्तादनि लाइ न आहे पर समूरे अमले लाइ आहे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जी कैंप ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह

अयाज लतीफ पलीजो जी आमंद शागिर्दनि सां यकजहतीअ जो इज़हार। अयाज लतीफ पलीजो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु बादशाही इदारो बणिजी वियो आहे जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो। रुगो मरसूं सिंध न ॾिसूं जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलंदा। अमली क़दम खणण ज़रूरी आहिनि। अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुरिजे। फामीदा पिताफ़ी अगवा केस जी सिंध हाईकोर्ट सखर में ॿुधणी। DIG सखर, SSP सखर ऐं धुरियुनि जा वकील पेश। अदालत पारां फामीदा लिगारी जी अदम बाज़ियाबीअ ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। DIG सखर खे बि छंड। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना, तव्हांजी कारकर्दगी ॾिसी लॻे थो त हिन डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई नाहे। जेकॾहिं अवां अदालत जे हुकुमनि ते अमल नथा कराए सघो त उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियो। ॿी सूरत में अदालत तव्हांखे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी। जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाब नथा कराए सघो त IG सिंध खे अदालत में तलब कंदासीं। केस जी ॿुधणी 7 सेप्टेंबर ते मुंतवी। कराचीअ में सचल थाणे जे हद मां वापारीअ खां 1.20 करोड़ रुपया फुर। हथियार बंदि बैंक मां रक़म कढाए ॿाहिरि निकिरंदड़ वापारीअ खे यर्गमाल बणायो। 1.20 करोड़ रुपया फुर करे आसानी सां फरार। इतलाह मिलण ते पुलिस पहुची, शक जे बुनियाद ते बैंक जे चयनि सिक्योरिटी गार्ड्स खे हिरासत में वठी छॾियो। पुछा गाछा जारी। जेकबाबाद में 2 ॾींहं अॻु घर अंदरि क़तल थियल पुलिस अहलकार महबूब जखराणीअ जो क़ातिल संदसि भाउ निकितो। भाउ खे क़तल कंदड़ जवाबदारु खादिम जखराणी सिविल लाइन थाणे ते गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। जांच आफ़ीसर मूजिबि फ़िलहालु जवाबदार खां जांच कयूं पिया। जांच बाद समूरा तफ़सील ॾिना वेंदा।

मोयन जो दड़ो वेझो कुत्तन का पान के बचाईंदे दादू कैनाल में बुड़ी वेल औरत एकली जोड़े की शादी 6 महीना अग थी हुई। दादू में पुलिस की मुबैना मुकाबले में मारजी वेल नौजवान जो केस पुलिस से दाखिल करण बाबत फैसलो महफूज सुभाने बुधायो वेंदो। नादर जमाली वाके जो पुलिस ऑफिसर खिलाफ 22A जो केस दाखिल कराने लाए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में दाखिल कल दरख्वास्त से बुधनी थी। दादू जो अगूणो SSP ए बिया अदालत में पेश थिया। धुरन के वकीलन जा दलील मुकम्मल थे बाद अदालत फैसलो महफूज कयो। 7 महीना अग नादर जमाली पुलिस के मुबैना मुकाबले में मारजी वो हो।

जश्न आमंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सिलसिले में सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में आशिकान रसूल जो रैलियूं जाती नसीराबाद पनवाकिल समेत बेन शहरों में रैलियूं कढ़ी वयूं। हर तरफ नातन मौलूदन की गूंज शहरों पारा भी घर के रंग बिरंगी लाइटन से सिंगारियो वो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी घरू वजीर से अहम मुलाकात। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। आई एस पी आर मूजिब मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच में बेतरफन लागापन इलाकई सलामती ए विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डेवट कई वही। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमन ए इस्तेहकाम ला सफारती हल कढ़ण ते जोर भरियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो विच ओभर में तकरार की पुरअमन हल वाल कोशिशों को हिस्सों है। ईरान मुकम्मल तौर से तबाह थी वो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमेरिकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेंसन है तेहरान खिलाफ तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही है। ईरान के व्यापार में सहूलत डींदड़ मुल्क इदारन के भी सजा दिनी वी। पासदारान इनकलाब अमेरिका की माशी हमले जो फौजी महाज से नाकामी जो इतराफ है। ईरानी आर्मी चीफ वीह साल जंग विड़नी पी तो विढ़ासी मुल्क के दिफा तुते न हटंदी। विच ओभर में बोहरान के पाड़ फलस्तीन जो मसलो है। फलस्तीन इसराइल विच में गालन की बहाली ए आजाद फलस्तीनी रियासत जो क्याम जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग के उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात दौरान गाल बोल। चीनी परदेही वजीर विच ओभर की चीज सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल थी वही है। अमन की बहाली लाए गालन तरफ वापस अंटर है। चीनी परदेही वजीर ए कोयती परदेही वजीर की मुलाकात दौरान सहकार बढ़ाने से तफाक। वजीर आजम पाकिस्तान ओलियो वेलियो चेन पॉलिसी जारी कर छी। तकरीब के खिताब कदे शहबाज शरीफ चो तो मुल्क में जरई इनकलाब ला हार की भरपूर मदद कई वी। 60,000 एकड़न से जैतून जो फसल पोखो पो वे जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नाणो बचा सकजे तो। हुकूमत हार की मदद वो सिलसिलो जारी रखी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सदारत हेठ निजकारी बाबत काबीना कमेटी जो इजलास। निजकारी के पेरे मरहले में शामिल डिस्कोस फेस्को गेपको ए आइस्को की रीस्ट्रकिंग प्लान की मंजूरी दिनी वही। चूंडियल असासा ए रयल पेंशन नई हुकूमती कंपनी एस पी वी डां मुंतकिल थी। मौजूद मुलाजमन जो बकायाँ डिस्कोस के जिम्मे होंद। पदरनामे में चुना है तो बिजली जो कीमतों नेपरा ही तय कदी मुलाजमन के हकन जो भी तहफुज किया वो। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की वजीर आजम से मुलाकात। सिंध के मामलों ए जारी तरक्याती मनसूबन से तफसीली गाल बोल। सियासी सूरत हाल से भी ख्याल की डे वट रवादारी ए सियासी मुशा

को बेतहाद नथो हली सके पीटीआई हर वो कम कंदी आहे जें का खेस रोके विंदो आहे वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई बानी बाबत अदालती फैसले ते हुकूमत अमल कयो पीटीआई वारन पाण मीडिया टॉक करे अदालती हुकुमन जी भञकड़ी कई।

आजाद कश्मीर जी कानून साज असेंबली जे नवन चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ खणी वरतो। आजाद कश्मीर असेंबली जे स्पीकर नवन चूंडियल मेंबर्स का हलफ खणायो। आजाद कश्मीर असेंबली जे 8 मखसूस सीटन मां बे नून लीग 6 सीटन ते कामयाबी मारण बाद ऐवान में नून लीग जी सीटन जो अंग वधी 31 थी वयो। पीपल्स पार्टी 14 सीटू माणे सघी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रजा केस की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़े छोड़ो। जस्टिस उमर सयाल कमीशन की सरबराही कंदो। जांच लाए महीने जो वक्त मुकरर। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब चयो त अदालती कमीशन ते मीर रजा के वारसन के साकार करणो पवंदो न तो यह सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहियुनि के साम्हूं अचणु घुर्जे। पुलिस ए जांच इदारा कमीशन की मदद कंदा। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के माइटन के मुतमिन करणु आहे। मीर रजा कतल केस में अदालती कमीशन जोड़न खिलाफ ए जी आई टी की क्याम लाए वारसन की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में बुधणी। जस्टिस अदनान करीम मेमन धुरन के नोटिस जारी कर छाया। 31 अगस्त से जवाब तलब। दरख्वास्त में मीर रजा जो पोस्टमार्टम कदड़ डॉक्टर उसामा ए डॉक्टर सुमैया केस की जांच कदड़ टीम के मेंबर समेत 19 जन के धुर बनाया वो। दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर चो तो पुलिस की जांच अजा तक हतमी नतीजे से ना पौती। अदालती कमीशन से केस की जांच से नाकारी असर पौधा। सिंध हाई कोर्ट बार की मेजबानी हेठ आल पाकिस्तान वकील इलेक्शन कमेटी जो इजलास। सिंध जो विरांगो रद्द। इम्कानी विरांगे खिलाफ मज़ामत जो ऐलान। आल पाकिस्तान वकील इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अली अहमद कुर्द तो सूरे बादशाह की धरती से वार थो तो वकील मज़ामत कंदा। सिंध सिर्फ जमीन जो टुकड़ो न पर माओ है। सिंधु दरिया सिंध की वहदत की निशानी है। सिंध की वहदत के नुकसान पहुंचाने न दिनों वो। इजलास में मुल्क के चैनी हाई कोर्ट्स जो वकील अगवान शरीक थे। सिंध में नवन सूबन के पीपुल्स पार्टी खुलियल तौर से रद्द किया है। सिंध जो विरांगो कबूल ना है। सिंध जा मानू सिंध के पैं वतन समझन था। सिंध सदन का आबाद है आबाद रही। सिंध के तालीम वाले वजीर सैद सरदार शाह चो है तो उस्तादन के फेस फ्रेम ऐप के 6 जिलों में लागू किया है। कुछ मानू का फेस फ्रेम ऐप हजम नहीं थे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद वी फेस ऐप सिर्फ उस्तादन ला ना है पर समूरे अमले लाया है।

0: दिखाए हैं जिसने आमद रसूल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।